ओए देखा नहीं हो हमले, देखा नहीं हो हमले, ओए देखा नहीं हो हमले, इस तो भी एक

नहीं हो हमले ओए देखो नहीं हो हमले देखो नहीं हो हमले ओए देखो नहीं हो हमले इस तो भी है कारे

0: इस समय सूचक का साथ
1: मा छिटकोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 5570 7061 98 5570 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4043 5580 98 5570 2640
3: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।

0: তথ্য সদায় নিষ্পক্ষ স্বদেশ FM 93.2 মেগাহার্জ খবর তপাইকো সমুদায়কো অনি তপাইকো সরকারকো
1: खबर तपाईको अधिकार अनि तपाईको अपरिहार्यता
2: तपाई हाम्रै गाउँघरको खबर अनि सत्य तथ्य सन्तुलित र विश्वसनीय खबर स्वदेश खबर

आप सेंसे का होम अप्लायंसर को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैशबैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैशबैक बनी र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।